0: सुनो 91.7 FM Qatar's favorite radio station.
1: पाटू पाड़वा पाटू पेशवा